0: छुपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, यस ए क्लासिक क्लासिक, बिलीव मी 70 सम ओड इयर्स ओल्ड। एंड जैसा मैंने कहा है ना कि पुरानी शराब नया बोतल, इट्स ए ब्यूटिफुल ओल्डी बट ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड इन विद न्यू म्यूजिक एंड इट्स ए वन क्लासिक, वेरी ब्यूटिफुली डन। एंड आई सी सो मेनी टीयरी आईड लिसनर्स ऑफ ऑलरेडी सेंडिंग इन देयर मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद आवर वेरी ओन प्रोफेसर दौलत रामदास। यस प्रोफेसर साहब, भेजू बावरा, यस दैट्स राइट, यू गॉट इट राइट, भेजू बावरा एंड ऑल्सो आयला बहन, Beju Bhavra, I love him, no doubt about it. And of course, Zakira of Johannesburg as well. These people know their ghazals really. And Pran Mahabir, together rail ke rehne wale hai. And also, she's also chipped in there. Together with Nirmala Devi, who's in Alberton these days. And Hamare Rahim Sheikh, Gautam ke rehne wale hai. Shukriya, Bhaijan. And also, young Cass from Cape Town. Thank you guys so much for tuning in and enjoying the program.
1: It's fun, it's fast, and it's fiery. The Spinner Zone Get Jackpot Race is Mzansi's most exciting slots competition, boasting the richest rewards. With over 60 piping hot habanero games to choose from, you stand a chance to win your share of 3 million rand. Join the sprint to success and claim your slice of the prize. Play every Wednesday, Friday, and Saturday evenings from 8:30 to 10:30, and you could win big. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp HELP to 076-675-0710.
0: जी हाँ, बीबी महमूद के साथ है एंड ऑफ कोर्स इट इज आवर उर्दू लैंग्वेज शो गुलदस्ता। इट्स टाइम फॉर सुनो और सीखो, आवर वीकली सेगमेंट। एंड दिस इवनिंग आई विल बी डूइंग अ फ्यू कपलेट्स एंड आई एम श्योर यू गोना एंजॉय दिस कपलेट्स एज वेल। चंद लम्हों की जिंदगी है, नफरतों से जिया नहीं करते। चंद लम्हों की जिंदगी है, नफरतों से जिया नहीं करते। लगता है दुश्मनों से गुजारिश करनी पड़ेगी, दोस्तों तो अब याद किया नहीं करते। चंद लम्हों की जिंदगी है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिव्ड विद हेट। चंद लम्हों की जिंदगी है, नफरतों से जिया नहीं करते। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिव्ड विद हेट। सीम्स लाइक आई हैव टू कॉल अपॉन एंड एक्सेप्ट माई एनिमीज because my friends have all forsaken me. Chand lamhon ki zindagi hai, nafraton se jiya nahi karte hai. Lagta hai dushmanon se guzarish karni padegi, doston to ab yaad kiya nahi karte hai. Life is too short to be lived with hate. Seems like I have to call upon my enemies because my friends have all forsaken me. Ye ishq nahi aasan, this is for the lovers out there. ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। When a person falls in love, he or she should realize that the road ahead is like a burning sea and it would be difficult to get through. It's the same old story for lovers. When you are of course alone, you cry, but when the world laughs at you, when you're all alone, you're crying to yourself, but when you laugh, the entire world laughs with you. Ye ishq nahi aasa, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। हाउ ट्रू दैट यू नो लव इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी टू फॉल इन लव बिकॉज इट्स लाइक अ बर्निंग सी एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई, व्हेन आई क्राई ऑल अलोन, हंसने को जमाना है, बट व्हेन वी नीड टू लाफ देन द होल वर्ल्ड लाफ्स। I think that should suffice, and I'm sure you're gonna love that. I'll read it one more time for you. Ye ishq nahi aasa, bas itna samajh lijiye, ek aag ka darya hai, aur doob ke jana hai. Ham ishq ke maro ka itna hi fasana hai, rone ko nahi koi, hasne ko zamana hai.

0: station ever. All the hits.
1: The Night Cafe on Lotus FM.
2: अंडा, अंडा, अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।